0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू है ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लो डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
4: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio
2: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio
0: Hanji, stay tuned.
3: Rhythm Boys Entertainment presents Bol Paave Na Bol.
4: Pyar nu sunan layi kanna di ni, dil di lod hundi.
3: Kuch gallan kehniyan nahi pendiyan, bas mehsoos karniyan pendiyan ne.
4: Eho galla te main hune apni zuban vadd ke ho jana.
3: Is vaar gall sirf bolan di nahi, dil di sunan di hai.
5: Sari zindagi kive kattange? मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैंने वो चाहिए।
3: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th September, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश तवन। लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
2: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू।
1: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी। तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: अक्षरा जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
4: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी, दिल दी लोड़ हुंदी।
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
4: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना।
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
5: जिंदगी किवें कटांगे, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
3: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th September, written and directed by Rakesh Tavan. Love, emotions, adi relationships di kahani. Bol paave na.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
4: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू।
3: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
4: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी। तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
3: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी तू बोल नहीं सकदी ओने नहीं होना तेरे पीछे।
4: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September written and directed by

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
3: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
4: प्यार नु सुनन ली कन्ना भी नी दिल दी लोड़ हुंदी
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
4: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
5: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
3: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
6: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
8: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी
9: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू
8: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
3: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
4: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
4: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा
3: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
5: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
3: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
6: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
8: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी
9: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ आखरी भी तू
8: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
5: मेरी जिंदगी छोड़न वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
1: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: यू आर लिसनिंग
5: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
4: हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: Hebeb,
1: hooray!
2: Hebeb,
1: hooray!
0: Hebeb,
1: Hanji.
2: Or an American, did he?
1: But तो ही की कहने हो?
2: 13 हो गए 13.
1: अच्छा 13 हो गया.
2: 13 हो गया.
0: Big girl हो गई एक.
1: 1 3 13
2: हो गए. 17 हो गया.
0: 17
1: हो गया. 17 ओके. फिर तो वो बिग हो गया.
0: फिर तो प्रॉपर बिग हो गया.
1: एकम दीदी तू ही तो बहुत बिग हो गए हो.
2: एकम दीदी 11 क्लास चा
1: वी. फिर तो
2: दूजी दीदी मेरे सवीन दीदी मेरे
0: 7th
1: class cha.
2: Achha, 7th.
1: Okay.
2: Good. 67.
1: Te ki sunaoge aaj?
2: Bali.
1: Okay.
0: Leo, ji leo.
2: Chole,
1: chole. Chole, ni ne ki nachna.
2: Aaj meri didi de.
1: Kaun barabar bolni aaj meri didi de. Kaun barabar bolni aaj meri didi de. Chole.
2: Didi de.
1: Hey. Sukhan didi didi de. Kaun barabar bol sukhan didi didi de.
2: साहिब देवी
1: ओ साहिब दी सुखन दी साहिब दी सुखन दी दी दी दे ऐदा ठीक है
2: हां जी
1: ओ वेरी गुड.

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हांजी
2: हांजी, मैं तो अपना गैरी संधु सो ड्राइवर दा मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय दी गल कर लगा जदों मैं कनेडा विच पहली बार गया। मेरा फ्रेंड मैनू कैक्टस क्लब लै गया, उत्थे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आईडी मंगदा सी ते मैं गाना

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं ये स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Hey man, सतबीर औजला, गीता MP3,
1: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है, मोना डार्लिंग।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ससुरिया काल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: नानक दास बोलै
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जंत सभावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए
1: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखै तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए
1: जी की जुग जाकै सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत् पालै जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सहत्यार
0: जिस भावे तिस लय मिलाए भक्त करै हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर
0: यह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत बचन हर की गुण गाओ प्रां तनुन काए हे सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंदीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे
1: तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए
0: निर्भउ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: वंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: तिसते भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी जो धार हे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार
1: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिपट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिसे आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आप ही कह
0: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राज
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतनी नीचे चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Om Shanti, and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Happiness Index को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था. ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे. बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा. आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को. और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है. तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं. आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता है?
1: ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे, लेकिन अब क्या है सिर्फ इजियर है. पहले मुश्किल था एंड दैट्स द जर्नी कि वो डे बाय डे इजियर होता जाएगा. अवेयरनेस ऐसी चीज नहीं आज सोचा
0: कल हो,
1: आज हो गया. बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ये डीप चीजें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते. कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की ठीक हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज क्रीप्ट अप अगेन. ये कहां से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है. इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी क्लियर. उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट. मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूं और जितना जल्दी डिसाइड करूंगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूंगी. सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का. थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कन्फ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना. And then, you know, that question itself says, okay, okay, fine, I know I was going on the wrong track. And you stop and you say, dhyan rakhna shuru kar do. Jaise humne pehle bhi dekha, ke let go karna hai. Jo pakda hua hai, unko jaldi jaldi chhodte jao. Jitna der pakad ke rakhte hai, utna phir chhodna mushkil hota hai. Isi tarah ek aur cheez ka jo hum dhyan rakh sakte hai, and that is let be. Let people be the way they are. Agar aap एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है. मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की. तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी. एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स. उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन, और ये ओपिनियन जरूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं. राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: बिहेवियर पर, उनके बिहेवियर पर, यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली. तो क्या होता एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है. अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में
0: नहीं सोच रहे हैं
1: और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है. लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो टूटेगा नहीं. आधा घंटा एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा. क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता. तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. लेट्स नॉट राइट अदर पीपल स्क्रिप्ट. ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर. वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर. लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था. अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज्यादा ध्यान किस पर होता है, कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। आज अगर हम थिएटर देखने जाए तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
0: अपने पे काम कर रहा
1: है, अपने पर काम कर रहा है। एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था, एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। अब इस चीज में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं। और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक। ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट। टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया। हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
0: पता ही नहीं है ना,
1: से ध्यान में रहने वाला
0: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
1: कैसे ध्यान में रहेगा। एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं। See, if I'm here, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ, आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी। एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी। आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस
0: टुडे? नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
1: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो। एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे आई थिंक, इन द मिडल
0: ऑफ, जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ यस
1: खत्म हो जाएगा।
0: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस, हम उसके बाद बात नहीं करते।
1: right.
0: एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेन्स with oneself.
1: अब जो कुछ, see, I didn't know this, but अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बींग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे। वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया कि औरों के रोल के अंदर
0: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
1: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट विल बी द बिलीफ?
0: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर।
1: सो वन, I can control the other person. ये एक deep belief.
0: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
1: लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
0: तो आप करोगे,
1: आप करोगे। So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं।
0: करें, करना चाहिए उन्हें।
1: लेकिन जब हम बोल रहे हैं, अब उनको जब हम यू नो रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
0: मेरे कंट्रोल में
1: है, और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए। दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू my likes, my desires, my expectations, and also second belief system, my happiness is dependent on their behaving the way
0: I want
1: them to behave. तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए ही सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते। सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं जस्ट राइटिंग।
0: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ है चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं, you know?
1: जैसे माँ आपने कहा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज्यादा आता है। इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट। यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन What we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
0: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? Again, we need to check actually.
1: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने यू नो लाइक्स डिसलाइक्स डिजायर्स जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है। हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता। सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में। तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हर चीज पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले। हम कितना भी ट्राई करें उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
0: हैंडल कर
1: खुद ही फेस कर लेंगे। वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। इट हैज टू बी हम उनको इतना स्ट्रांग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट। यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर। तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
0: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। सी अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर।
1: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन, यू नो यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री
0: वो
1: नहीं कर पाते हैं उस तरह से। तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया? मैंने तो
0: अपने रोल पे तो काम किया ही नहीं।
1: अपना रोल, अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का। मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना। तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू। बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
0: खराब होता गया ना फिर। हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया। अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है, उसको अगर हम एक मिनट में खराब,
1: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
0: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कैसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
1: है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि वे वॉज आई मेकिंग अ मिस्टेक। दे डोंट स्टॉप एंड टेल मी द लाइन्स, दे डोंट स्पॉइल द हार्मनी ऑफ द ड्रामा, यू सी। तो सिमिलरली अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, according to me, galat dialogue, galat line, sab kuch, I can just take care more on my role, you know. Aur bhi zyada dhyan rakhe ki I'll not get hurt, I'll remain stable. So that might give the cue to the other person.
0: Ki, oh, main bhatak gaya tha, meri line to ye thi.
1: Yes. Lekin jahan wo bhi lines apni kharaab kar di, मैंने भी अपनी लाइंस खराब कर दी एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइंस को डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेसेंट एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता फिर हम कहते हैं ये जीवन ऐसा क्यों है तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरीवन बी ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी क्योंकि हम बहुत एनर्जी और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एक दो की लिख रहे हों चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते
0: उसे ऐसा कहना चाहिए था हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस
1: Yeah, is this the way to speak? We don't even say he could have said this. No, he should have said this. Means so
0: this, this is what you know. This is how the world should be.
1: Yeah. Why? Because this is the way I would like the world to be. तो इसको एक homework के रूप से देखें कि आज एक दिन try करें. How do you feel जब आप औरों की script में इंटरफेयर न
0: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दे इवेल्युएट करना बंद कर दे अमेजिंग यू नो हाउ वी डू
1: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है इसका हमें बहुत जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको ऐसा नहीं देर इट्स गॉन दैट स्टेबिलिटी है मॉर्निंग में उठे मेडिटेशन के इट्स वेरी नाइस यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था इनको क्या करना चाहिए था एंड देर यू गो अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो आपका माइंड ऐसे रहेगा देर इज नथिंग एल्स आउट देर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है ये हम जब हो जाते हैं सो राइट नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक इन दिस एंड आई कैन जस्ट से इट्स इजी बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप ऑफ हो जाता है ये ऐसा संस्कार है कि यू नो वी ट्राई टू रिमाइंड आवरसेल्फ एंड देन बिफोर वी आर अवेयर 10 मिनट बाद आई सडनली सी ओ माय माइंड इज अगेन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स एंड अगेन वी किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहा है व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी कम बैक लेकिन वो करते करते आई कैन सी कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड वी नीड टू फिनिश इट क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है पहले तो क्या हो रहा था गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था कैसे चला रहे हैं लाइन में नहीं खड़े टोल पर खड़े हैं गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है लाइन को तोड़ देते हैं टैग की लाइन में कैश फर्द ओ देर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट यू नो इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू गेट सक्ड आउट There is just too much happening.
0: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually and we should become little selfish.
1: No, very selfish.
0: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain aur wo hum observe aur hum kehte hain hum to neutral observer hain lekin hum kitni sari cheeze un par
1: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na agar aap detached hokar dekho abhi bhi if I'm standing in the traffic jam I can see people where they are making their mistakes they're overtaking wrong but
0: it's not affecting you
1: create anything here अभी भी दिख तो रहा ना आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी लेकिन यहां कुछ नहीं होना चाहिए ओके दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है एंड दे हैव द राइट टू डू इट एवरीवन मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग बट आई एम फीलिंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है लाइन तोड़ रहा है उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए और जैसे ही हम ये लेट बी करना शुरू करते एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को लोगों को कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग यस इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू गेट इन्वॉल्व इन देयर ड्रामा You know, किसी का अपना कोई ड्रामा है एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा
0: हम न्यूट्रल इन्वॉल्वमेंट,
1: लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाए कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
0: वो हमें, हम करें, लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है.
1: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर इफ योर रोल सी, यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं. लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, जब वो दूसरे एक्टर के इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाते. बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना, टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू. लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली. क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना. इट गोस अवे.
0: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन, ये बिलीफ सिस्टम है कि यही, ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना.
1: रोल प्ले करना है, ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है. मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
0: ऑटोमेटेड मूवमेंट.
1: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है. मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया. उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है. दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है. वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती. लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देयर वॉज जस्ट वन चॉइस. एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है. ये नेचुरल था एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं.
0: Somewhere we were actually taking love as attachment.
1: And we even say to each other, I can feel your pain. पेरेंट चाइल्ड के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए, अपने लिए, कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते तुम ठीक हो जाओ. यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है, तुम ठीक हो जाओ. वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई. कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ. बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों? क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
0: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
1: मैं ठीक हो जाऊंगा. सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे. और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा. सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन. कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज सुनने के लिए ये नॉइज को खत्म करना पड़ेगा. अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज देता भी है लेकिन
0: तो हमें आवाज सुनने की सारी आवाजों में फिर वो कंफ्यूजन, ये आवाज ठीक है या वो आवाज ठीक थी.
1: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर हैं तो अंदर से आवाज आती है. हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज को क्या किया,
0: अनसुना.
1: मैंने अनसुना किया. क्यों अनसुना किया? क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज की बात मानती हूं तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग, और आई डोंट वांट, आई शुडन्ट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन, आई डोंट हैव टाइम, बट आई एम स्टिल वॉचिंग. तो अंदर से ये छोटी छोटी बातें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस, कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड, लेकिन आई से गो अवे, मुझे खुशी चाहिए. यू नो, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
0: कि मुझे वो चाहिए,
1: कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज.
0: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड You know, the realization is so much.
1: Yes, it is. But I'm not listening to myself. So I need someone else to come and say it to me. तो क्या होता है जब उसको बार बार दबा दिया जाता तो वो अंदर ही वो दब जाती है. And then when it will come out, वो एक emotional outburst के रूप में आएगी. हमारी conscience जिसको हम कहते that keeps giving me the signals and it always gives me the
0: right signal.
1: Always. Now it's just up to me to take that signal. Ignore karte gaye, it's like hame ek bahut acha teacher mila hai jo hamesha hame acha sikha raha hai, lekin main us teacher ki awaaz ko, uski wisdom ko, kyunki sari wisdom bhari hui hai mere jeevan mein, mere liye kya sahi hai,
0: no, mere paas hai,
1: mere paas answer hai. I never need to go and ask anyone else. Lekin
0: aur aaj kal hum har cheez, har chota decision bhi, office ka decision bhi, ghar ka decision bhi 10 logon se pooch ke kar rahe hote hain,
1: because we not listening. So वो ट्यूटर अंदर बैठा है, उसकी बात को सुने, और जितना सुनते जाएंगे, you know, ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम
0: और
1: भी देता जाएगा,
0: क्लैरिटी और.
1: यू नो, सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो, मैं सुनती ही नहीं, फिर आपने दूसरी बार बताया, मैं सुनती नहीं, चार बार बताओगे
0: आप नहीं सुनाते,
1: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे, तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया. और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं, तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे. इमेजिन, माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
0: बहुत सुंदर. तो आज जो हम इस प्रोसेस पे है कि हमें करना क्या है, जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों की स्क्रिप्ट लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी. एक तो लेट गो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर दे, मेरा टीचर ऐसे कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले. समवेयर वी नीड टू लेट बी, वो जो जैसे हैं. और दूसरी बात कि जहां हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया, चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें, यू नो, चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो, सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले, एट टाइम
1: दबा ना दे उसको,
0: यू नो, उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे, यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू, यू नो. सो यहां ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है, उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा, मेरी आवाज मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा. तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें. तो कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल अभी भी है, या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर है 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. तो सस्ते शिवानी, आज की जो पूरी बातचीत रही, बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है. आप कितना करेंगे यह हमारे पर निर्भर करता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे जरूर, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना. थैंक यू सो मच ओम शांति. और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात, लगता है कि पॉसिबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट ना. पहले भी तो हम इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे. बदला जीवन, आगे और भी बदलेगा, हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति.

0: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क कर।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल,
3: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी,
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
3: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा।
2: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: जिंदगी किवें कटांगे, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
2: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोढ़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।